हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो अते हे दास नानक आख

कालू जी राय बुलार दे पटवारी सर आख्या मेहता जी आपनू राय जी याद करते हैं उस बन विच बैठे हन ब्रिक हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन उन्हां मेहता जी आए राय जी ने आउंदे ही पुछिया मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू सराप देंदा हां के तू सुख के तीला क्यों ना हो गया क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी राय जी जापद गुरु नानक हुण नहीं आवेगा आख्या इवें ना आखो तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी जापद वह भी इतने आवेगी क्योंकि घर की हालत तो बहुत खराब है 12 साल हो गए हैं गुरु नानक नू घरों गया ते घर तो घर नहीं है खंडर बन चुके क्योंकि जिस घर का चिराग 12 साल हो गए हुण बार होवे जिस माता का इको एक बच्चा इको एक लाल होवे ते ओ भी 12 साल हो गए हुण गया होवे करो ते कोई सुख स

आए आवाज दिती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है। भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा, गुरु नानक पातशाह ने अगां होके मां नूं मां दे गल ना लगे। माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्शता कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलिया ता की वेख्या, चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या, बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने यही कहिंदे हन कि इस हाथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी तां हाथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए, मैं तां कालू पिता दे चरणां नूं हाथ लाया, चरण स्पर्श कीते। पिता कालू ने गल ना ला लिया, बेटा मेरे तो पहले भी राय बुलार नूं मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठां बैठा है, गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठां, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदा है कदे इस पासे मुंह करके बैठे। सोचदा खबरे इथों ना आ जाऊं, फिर सोचदा खबरे दूजे पास्यों ना आ जाऊं, मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रहा ते पिछों आवाज आई, राय जी असी आ गए। आए गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या, सामने गुरु नानक खड़ोता है, चरना ते डिग पिया। आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन होके जप रहे हैं, की कह

बहुत कमाल दी गल कर दी। सप डंग मार देंगे कहते ने लोग, सप तो बचने की कोशिश करती कि सप का डंगया होया मनुख बच नहीं सकता, पर फरमाते नहीं

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किवन किन्हीं निवल भयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा, किन्हीं ग्रह तज वन खंड पाया, किन्हीं मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

सुरत ना श्रवणन बचन मधोकी है, अंग अंग हीन दीन कैसे बरमाल करो, मस्तक नाहे भाग

मन में ना गुरमत, गुरमत में ना मन, निचल होए ना उन मन लिवलाइए, अंग अंग भंग रंग रूप।

हुण तू अपना सुभाव वेख। मेरा सुभाव मैं जतन करना के बदल जावे, बल्कि तेरी कृपा हो जावे ते बदल भी सकना। पर मेरे सुभाव ते मेरी करनी वाले पासे मेरे मालिक तू ना वेखी। तू अपने सुभाव ते अपने असूल ते कायम रह। तू बख्शांद होण दा सबूत दे। और कई बारी शायद ऐसे भरोसे ही तेरी बख्शों का सहारा है हमको, इसी वास्ते हम गुनाह कर रहे हैं, ऐसे करके भुली जाने, ऐसे करके गुनाह कीती जाने भी कोई नहीं बख्श देवेगा। हालांकि ऐसा चाहिदा तो नहीं, मैनु ऐसा होना तो नहीं चाहिदा। तेरे बख्शंद सुभा दा मैं योग लाभ उठावा, क्यों ना मैं सुधरी जावा। पर यह सुधारना भी तेरे हाथ है। पिछले गुना बख्श के अगो मार्ग पाना भी तेरी समर्था है। मेरा सुभा ना वेखना, अपना असूल ते अपना सुभा वेख के ओदे अनुसार मेरे नाल वर्त।

मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई। सात सिगत बोलो श्री वधाई दीती से बार आई कोठरी विचों

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। साथ सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैता कालू नू वधाइयां मिल रहियां हैं कि आज बालक ओ बालक पैदा होया जिसका दर्शन करके सब दा तन मन

मैं संसार नू की जपावा। आवाज आई उस जोत विचों, नानक तू संसार नू जपाउना है, जगत दिलंदे नू ठारना है, ए उपदेश देके। उस जोत विचों आवाज आई,

आगे को किछ तुल्हा बांधो। कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुल्हा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। सब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै।

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहेगुरु शब्द का उचारण करदा है उसनू एडा वड्डा फल प्राप्त है कि जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ आठ तीर्थां दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इसका महात्म एथे ही बस नहीं अगलियां तुकां

कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, हुन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहे गुरु कहो।

करो किच मेर पावो डुब दे पत्थर तारे जोड़ा अगन बराबर तपे पीतर वगे काती प्रणवत नानक हुक्म।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शरीरक रूप नहीं वेखदा। साहिबा ने बाणी विच कथन कीता।

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

पर तू अपने नाल भी अपराध कर रहे। किस तरह? नाम ना जपे से आत्म काती। जो मनुख नाम नहीं जपते सिमरन नहीं करते वो अपनी आत्मा दा आत्मघात करके अपराध कर रहे हैं।

कोई ना रखे। विश्वास काती अकिरत कण, विश्वास काती किसनू कहिंदे ने, जेड़ा किसे नू प्यार विच ले आके बसा के मारे, अपना बना के मारे उसनू।

अंतरजोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है। शब्द का मुख भाव रहाओ दी पंक्ति ते हुंदा है।

उसनु कोई सुनावे कोई कहे, अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनु भी सुनदे हन, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे ने, अंतर जोत राम प्रगासा, जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नू जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है, गुरमुख विरले जानी, कोई विरला गुरमुख इस कहानी नू जान

गुरु ने कृपा की थी, ज्ञान अंजन, अंजन कहंदे ने सुरमा, गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई, राम नाम तो बगैर जीवन किसे

तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाहीं बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाने ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करते हैं कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जाते ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे तो दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश देंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमाते हैं,

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे देहधारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदा है। ते गुरु कहंदे तुसी मैनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। तो जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है। इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

मंजिल तक नहीं पहुंचते। गुरु की लोड़ इसे वास्ते है कि सच्चा उपदेश साडे हिरदे विच वसे, पर गुरु की प्राप्ति निम्रता प्यार और सेवा नाल हुंदी है। होता ते ब्रह्मा दो भरा सन, दोनों भगत ने, भगती दोनों भरा करते ने, किसे धनी पुरश ने दोनों भरावां नूं भगत जान करके अपने घर बुलाया। भगती ते करदे ने पर हाले गुरु दी प्राप्ति नहीं। दोनों जने तानी सेठ दे घर पहुंचे। उस तानी पुरश ने दोनों भगतां दी सेवा कीती, अन्न जल छकाया और तुरन लगे हैं। दोनों भरावां नूं दक्षिणा दीती, माया भेट कीती। होता वड्डा सी, वड्डे नूं वड्डा समझ के चोखी माया। ब्रह्मा छोटा सी, छोटा समझ के थोड़ी माया दिती, पर ब्रह्मा चलाक सी। उन्हें दोनों पेटावां कठियां कर ली। घर आके अधी अधी ढेरी कर ली। होता कहन लगा, ए तेरे वास्ते ठीक नहीं, जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप कट्ठे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए और झगड़ा होता भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कोई सेवा दा चाह, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप किया, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं।
राम गुर सरन प्रभु रखवारे। ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कड निस्तारे। गजपत पार उतारे अनेक शब्दों विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक परा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी। बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। यह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी। यह ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिलिया और हौली हौली यह हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया और अगे इहदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनियां तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहलां ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा। पिछे नहीं मुड़िया जांदा ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है। इसने जोर लाया, कुछ पिछा आया पर फिर तंदुए का जोर चलिया ते हाथी नूं खिंच के ओ पानी दे

जो परमेश्वर की भगती करते हैं, जो अकाल पुरख का सिमरन करते हैं, पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं, फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया, जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्याई, हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावा, हर का नाम हृदय नित ध्याई, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा, मन करके जपा, हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपे है और जपन गे, हे प्रभु कृपा करी उना सारिया नु ही अपने नाम दे सदके तार लें। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन दे पातशाह क्यों दिन, फिर उना दे अंग संग होंदा है गुरु। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। जो सिमरन गे परमेश्वर दा नाम, साईं दा नाम, आखे सदा गुरु उना दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। पर जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जाता, हर हर जन दो एक हैं। बिप विचार किछ नाहीं, जल ते उपज तरंग जियों, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के वो सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पाणी मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है, मैनू दुख विच रखिया है, ये तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करां, अमृत वेले उठ के तेरी भगती करां। और जो परमात्मा दी भगती करदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

दरबार विच बैठे साईं मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन दे पातशाह कहन लगे, साईं मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है, तो चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं की।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

अमृत अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सात युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जिहड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखां नूं पियाया, वह अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रख्या करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेने से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे। एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पारे लस्सी ते मक्खन आपां नू उदू मिलेगा जदू आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी। ता सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया। शेष नाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासिओ उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासिओ दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले। एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी। देवते उस शेष नाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहे है। बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारिया तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदा है। ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करते। जहर तो बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

लावते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े होए कोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने किया बच्चियो कोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां इस तरह दे कोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नूं भी दरख्त दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नूं आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शिद हो गए। ता उस वक्त सीता जी नूं पता लगा। उन्हें आके क्या बच्चियो, एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हैं। उदों पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही नहीं जिहड़े साडे पिता ने। ता लिखिया है उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नूं सुरत विच लियांदा। जिहड़ा अमृत बचिया जगह पुट के उस नूं दब दिता गया। त्रेते विच इह अमृत इस तरह प्राप्त कीता ते लिखिया है कि जिस जगह ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगह प्रगट हुई। इस जगह धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगह नूं अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद कीता जांदा है।

द्वापर युग बीत गया, कलयुग आया, धन गुरु नानक साहब का अवतार होया। आओ हुण गुरमत अनुसार अमृत बारे विचार कर दें, क्योंकि हर पक्ष देख के फिर चलना चाहिए ता आनंद और समझ पूरी आंदी। धन गुरु नानक साहब का अवतार होया सुल्तानपुर लोधी। धन गुरु नानक साहब जी ने जदों रहना शुरू किया रोज अमृत वेले नदी ते इशनान करन जांदे ने, अज भी इशनान करन गए, सेवक खलोता है देख रहे है। अचानक इशनान करदे हैं, धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी चुभी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी वो कहन लगे मेरा वीर डुबिया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड, अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले

0: कोई कीमत है। तू मेरे नाम दा प्याला पीता है, दस तेनू इस नाम दा रस कैसा आया है और इस रस दी कीमत की हो सकती है। ता उस वक्त धन गुरु नानक साहब ने ए शब्द उचारे,
1: कोटि कोटि मेरी आरजा पवन पियने अपिया।
0: कोट कहंदे ने करोड़, ऐ परमेश्वर करोड़ा करोड़ा साल मेरी उम्र होवे। पवन कहंदे ने हवा नू, करोड़ा करोड़ा साल हवा ही खावा ते हवा ही पीवा।

एक गुफा च बह जा। करोड़ां करोड़ां साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना। इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख तेरे नाम दी कीमत

कलयुग विच सब तो पहला अकाल पुरख ने सचखंड बुला के आप नाम दा अमृत दा प्याला पियाया। धन गुरु नानक साहब अपनी

सुत कंदे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत दोहे निवाजा पंत प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा पहले जन्म दा नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं

अकाल पुरख के चरणों में बेनती की। गुरु साहबां दी अखां बंद ने, अखां दे सामने एक सूरत आई, लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां, चौड़ी छाती, मत्था चमकदा, अखां विच नाम दी लाली, बोल फरकदे नहीं, सोहना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा, सोहनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पुछदे ने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पुछदे ने, तू कित्थों आई है? उस सूरत बोली, मैं तुहाडे हिरदे विचों आई हाँ, मैनू हुण तुसी बाहर प्रगट करो। जो चाहिदा सी ओ मिल गया, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे ये सूरत बड़ी सोहनी है, पर किन्नू दियां मसंदां नूं, पंडतां नूं, साधुआं सन्यासियां नूं किन्नू दियां ये सूरत? क्योंकि जे आपां दुध लैण जाणा होवे ते भांडे नूं चंगी तरह साफ करके ले जाने हैं, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा सोहना ते साफ चाहिए।

सिंह बुलाए ते क्या जाओ चेतो दे कर चेतो दे करो। सिंह दूसरा कंगन भी कढ लिया है। सिख दी भावना पूरी हो गई पर कलगी तर पातशाह दा मन इन्हां मसंदा वालों उचाट हो गया कि ये जड़े मसंद ने ये अमृत छकन दे।

ज्यादा पंडाल खाली हो चुका सी ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे है। पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते। बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विच बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है। वो पंजो जिन्हां दे सिर वड्डे सन वो ते जिउंदे ने इक वर्गे कपड़े पाए ने गात्रे कृपान सोहणियां दस्तारां हत्थां विच कड़े तेड़ कशहरे हाथ जुड़े ने पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विचकार दो तारा खंडा रखे

देहोरा मसीत सोई, पूजा ओ निवाज होई। देहोरा और मसीत, पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे नहीं उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, इह सिख धर्म दा ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालिओ सुनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुहानू की उपदेश करदे ने। ना मंदिर

साहब जी कहते ने चाहे कोई हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है संसार विच जितने भी इंसान हैं सारे पांच तत्वों तो बने हैं ते फिर भाई फर्क की है फिर ये झगड़े क्यों ने।

बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं,

अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं झगड़े पाले और जेड़ा ये जन्म मिले है झगड़िया में चुकवा लिया और आवा गाउण दा चक्कर जेड़ा है ये उस तरह ही

जे सदियां तू चले आ रहे है ते सदियां तू उपदेश भी यही हो रहे है के भाई क्यों लड़दे हो, इंसान रब दा रूप समझो ते जेड़े लोग शैताना वाला काम करते ने ओना दे राह छड़ दे हो। भाई साहब जी बयान करते हैं मंदिर ढा के मसीतां बनाईयां ने मुगलां ने, पर की मंदिर ढा के मसीत बनाने वाला अपने अल्लाह नूं प्यारा लग सकता है? कदी नहीं लग सकता। इत्थे एक गल याद रखनी, हर कौम दे विच भैड़े बंदे हुंदे हन, पर सारिया कौमां नूं माड़े कह देना ये ठीक नहीं। हर कौम विच कोई ना कोई भैड़ा बंदा जरूर होंदा है, पर सारी कौम नूं माड़ा कहना ये इंसाफ नहीं। भाई गुरदास जी बयान करते ने वो गल्लां जिहड़ियां इतिहास है और जो सच्चाई

वेद निवाज और भाई साहब जी कह रहे ने मुसलमाना विच रोजे ईद निवाज ये जरूरी कर दिते और संसार दे विच जेड़े मुसलमान हैं ओ इन्हां दे पाबंद हैं।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरदास जी ने इस्लाम धर्म का जो असूल है उहदे बारे दस्सिया कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा यह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना, तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म दी रक्षा करो। ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म दी रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जांदे रहे भाई गुरदास

और जिन्हां ने इंसाफ करना, जिन्हां ने प्रजा का भला करना है, उन्हां दा हाल की? काफर, मुलहद, इरमनी, रूमी जंगी दुश्मन दारा, दारा कहंदे ने औरत नूं। वड्डे वड्डे राजे, वड्डे वड्डे नवाब, वजीर, इन्हां ने अपना की काम बना लिया? राज भाग मिल गया, लोकां नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा इह काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा

ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो ये नाराजियां महाराजियां दा वजीरां दा की काम बन गया, अपने फायदे वास्ते ये धर्म तो दूर हो गए और लोकां दा नाश करन लग पे।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी ने दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पासे ब्राह्मण ने उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनु ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनु ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा सारे ते

गुरु साहबानी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसे फिरके दे खिलाफ नहीं, वो जुलम दे खिलाफ लड़ाई सी। ते जुलम करन वाले दा कोई धर्म नहीं होंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुलम दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरशां दे राह ते चलीए, और ए जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा उहदा जीवन सफल होवेगा।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उन ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तो।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

कि कृपा कर मैनू अपना ते मैनू मान बख्श, क्योंकि तेरे सिवा इस संसार ते मेरा होर कोई नहीं। ये अरदास है गुरसिख दी अपने परमेश्वर दे चरना कमलां।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समरथ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो समरथ है, जो मेरे सारे कार्य

मुस्कराया, हैरान रह गई दौलतां दाई, मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई। सत सिखत बोलो श्री, वधाई दीती से बार आई कोठरी विचों, वधाई दीती मेहता जी वधायों,

कबीर मानस जंदरला बहे होतना बारंबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा।

तब एक मानस देही पाए, मानस जन्म अमोल पायो, वृथा काए गवाओ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एक मानस देही पाए। इस देह को सिमरे देव सदेगी पज हर की से, पजो गोविंद भूल मत जाओ, पजो गोविंद भूल मत जाओ, मान चमका लाओ, जब नग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पाई नहीं बाणी, पज लै रे मन सारंग पानी, अब ना पजस पजस कब पाई, आवे अंत ना पजया जाए, ए तेरे अवसर ए तेरी बार